0: बॉक्स नंबर 9 की जुमंगना दस्तार शाह द खैर असर लाड़े बॉक्स नंबर 11 लाखम ललिता लाला तस्वीली ची बॉक्स नंबर 11 के मोहम्मद दस्तार शाह दे बॉक्स नंबर 9 की जुमंगना मोहम्मद दस्तार शाह लाड़े बॉक्स नंबर 11 के उस वेची सूख दी
1: बॉक्स नंबर 11 खाली दे
0: दी की दा निसार राणा
1: जी
0: उस रजी की कहना रिश्तेदारी
1: बिल्कुल ना बिल्कुल नॉर्मल हाल है
0: उस रजी की माना पता उसी धड़क धड़क शुरू का
1: बॉक्स
0: नंबर 11 1100 रुपए समान वाखला बॉक्स नंबर 11 अपने सबाब को लगू निसार लालो
1: जी
0: देख दे ये ना किस पे माना दा
1: बॉक्स
0: नंबर 11 उबासु बॉक्स नंबर 11 को गुरु चुदमंग सर सूख दी बॉक्स नंबर 11 सादे लाला जी कुलावे कमा
1: बिल्कुल कोलाव करें
0: दावाले दावाला दावाला स्को स्टेप लरिशु बॉक्स नंबर टोकन मारा वागस वोए वोए वोए वोए वोए वोए वोए वोए वोए वोए वोए वल्ला चिमा वक्ती अस्सी वेल ची देखी दा आउ कसम देखी देखी दा
1: हाँ
0: देखी दा उस रात वो चला लजी देखी सोक दा वक्ती माना वो लिदली मासी वेल ची देखी दा उस दरिशे हुए मा ची देखी दा
1: देखी नूर दा
0: देखी नूर दा बखले बार कजा
1: मैं जब बखले बार कुंभ या बार नहीं थी गलत इंफार्मेशन वाली को
0: निसार लाला जी बॉक्स नंबर 11 की जुमंग सर दा और गुरु जी जुमंग सर सूख दी निसार लाला दी बखले बार की यू टाइम स्टार्ट नाउ
1: जी
0: जकना गर्म के राशि बॉक्स नंबर 11 की जुमंग ना जा बॉक्स नंबर 11 या 11000 रुपए
1: नहीं जी बस
0: बॉक्स नंबर 11 जमासर टाइम शार्ट इन बॉक्स नंबर 11 द टाइम इज ओवर 11000 रुपए कैंसिल बॉक्स नंबर 11 की जमुंगना सारा अली खान बॉक्स नंबर 11 की जमुंगना लाड़ा का नजर तली ना बॉक्स नंबर 11 के सारा अली खान लाला के नजर तले
1: बस
0: नजर तले ना बॉक्स नंबर 11 के द वन एंड ओनली सारा अली खान सुमंगना लाला जीत तले ना के नजर तले बॉक्स नंबर 11 सारा अली खान सुमंगना ला ला ला।

0: كانك جيت
1: بالالساندر الوهلة بمار
0: انا بعد كيف كانك جيت
2: we'll be back right after the commercial break.
3: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ नए साल में एक नया आगाज

भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94

तक द्वानो इलाजुन ना उम्मीद शुरू बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा कतासु क्यों

हाँ जनाब सिंह ही तो सही ठीक ठाक ये खैर खरीत है ये किन्नत दस बार ठीक ठाक ये खैर खरीत सर भैये दिलवर रेडियो और ये दो दफा रेडियो जहाँ मना ना अच्छे तासो ट्यून इन खड़े दे अखबल खोरने जरूरत नहीं दे एफएम स्टेशन एफएम 94 रेडियो दिलवर सॉबी कदरमंद दो माइक्रोफोन दिए गाड़े थे ना स्तास कुरबात ताहिर जमान तासुर लाइव तो कम कम सीमा वाणी जमा आवाज और देशी सुमरम जमुंग या जमाज कम देनो ग्रान करदान और ईदुन के वाड़ा माशुमान यादी ने लवज कम देनो लोए लोए और ईदुन की जमा सलामुन ज कम देन पजान मंजूर कबूल करीजिए संग मंग चल दे जी सक होए सनक होए सब मसरूफियात मोदी सब हालात वाकियात दे कता उस गमदन अखफल करनु की लगी है ये न हम ख खबर द कपरदी बेगरन की लगी है ये न बद खबर द आवाज मु गौरी देश जी सोवे बसी मा पंच पीर दीन लव शाह मंसूर चार चार फिर आद सोवे सुमरम इलाके दी मनन जी आई होप जमा यकीन जमा उम्मीद हम दग दे चे मौसम बहुम तासुपला टिक टाक भई ख खैरियत सर भई औख जबरदस्त ए वन फर्स्ट क्लास मजेदार मजेनाक मौसम भई जी औ कदई वक्त किच कम देन सोख ड्राइविंग के नो तास दग खबर कॉल गाड़म छे ड्राइविंग डेर पे एहतियात को वही कोशिश को वही मोबाइल फोन कॉल फोन मोबाइल इस्तेमाल कम देन ड्राइविंग पर दौरान मको वही जबरदस्त म्यूजिक दे जी नवे बैकग्राउंड म्यूजिक सरा तो सरा हाजिर शिवी हूँ माजिगरी फदी टाइम के आओ माजिगर टाइम डेर जबरदस्त टाइम है जी चिकल बंदा अखलक पलवान नसरा नाज से याज गम देनो बंदा खलज गम देनो दस खल को सरा नाज थी जरूरत गमदन सुकून मिले नो इंसान नोर भी हम गमदन रिलैक्स ची कदरमंदो यो गेंठे तो पर जरा अगले माओ यो गेंठे गमदन तसर बगप शब लगे हुआ पदी प्रोग्राम के शामिल दो पर सिफर 9382804595 तस पदी नंबर कॉन्टेक्ट खोल छे कॉल्स खोल छे कोशिश भी कहूँ छे सासु लाइव कॉल्स सासु एसएमएस मतलब मींस सासु मैसेज ना प्रोग्राम के शामिल को सासो मौजूदगी जी कमदन दा मुंग पर कमदन खबर दा जी लोया खबर दा जबरदस्त खबर दा ग्रेट खबर दा आओ सोग भी लगी है दे वक्त किस कमदन छे बजोड़े ही और सोग भी लगी है छे बस कीजिए अब पता उस चेस के ही कना चे किस गम देनो माँ गुरु जी गम देन तो उस हीर ना की ठीक थे कना अब सिंग चेस गम देनो कम रकम चेस के लग स्ट्रॉंग चे या दीना लग मामूली मामूली चेस के ही बस चे खुशे जी चे चे हर रंग गना चे दी बस खुशेज गमदे नो गुड़े वाले चे डेर जबरदस्ती मजे की हो फन के आओ कता उस गमदे नो गुड़े वाले चे इसके ही नो ब्याह हुज गमदे नो माँ जरूर बगीच गमदे नो या साथे चे नवे और ईदून को तो हम गमदन प्रोग्राम के हर गले हुआ दिन अलावा जाड़ा और ईदून के सुमरम रेगुलर और ईदून के दिन अगीदा हम गमदन प्रोग्राम के वेलकम वायु अगीदा हम प्रोग्राम के हर गले हुआ मुंगा चाद परज गमदन द आवाज नवे भई और चाद परज गमदन द आवाज हम आगा आवाज आगा हुजूर आवाज जी संगम के चल दे सो अभिवालो माजगरे द टाइम गमदन और पता सुखतीरी की कतासु जाने डा टाइम खपता सो तासु कम दे नो डा टाइम खन तीरी की नो कोशिश बको छे दगा योग एंटर कम दे नो तासु खतीर छे जे ये आवाज जमा खबर बने जे तासु बम राजी तासु बम कम दे नो अखपले खबर बको वे या 09382804595 लग टाइम बाद तासु लाइव कॉल्स प्रोग्राम के एंटरटेन को शामिल हुआ

अल्लाह दे खैर रुकी जी, तबीयत डेर जा, तबीयत डेर जा, गमदन गड़बड़ दे, बर के मैसेज ना कम रगले, मैसेज ना प्रोग्राम के शामिल हुआ।

ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सा सुखार पर सवाबई की हूँ
1: बेलाडोना को क्रिएशन बाय डॉक्टर हैदर अली मुमन
0: चार सदी और द चार सदी सरा द खौशा अलाको द कड़ी दिली बीमारानों दे पारा द खुशहाली खबर द खैबर पख्तूनख्वा मशहूर और मारूफ अस्पताल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल प्रानिस्ता उस्ता सुपखार चार सदी की सुविधा उस द इलाज द पारा पेखवरता दतलो जरूरत निश्ता मयारी इलाज उस्ता सुपखार चार सदी की अगम द हैदर मुमन मेडिकल सेंटर ना ओली चीप हैदर मुमन मेडिकल सेंटर चार सदी की सिर्फ रिपोर्टुना कागजुना टेस्टुना न कतले कीगी बल्कि इंसान और द इंसान दर्द कतले कीगी दलता न गैर जरूरी टेस्टुना कीगी न बेला वजा खर्च कीगी सिर्फ द जरूरत मुताबिक इलाज कीगी द डेर कलुनो द तजुर्बे न बाद और द पोए न बाद मुंग द फैसला उकला जे द खिदमात मुंगला चार सदीता रारसोल पकार दे कतासू डेर कड़ी दिलिए डेर गर्जी दिलिए नोजल मुंगता मुकरा कई औखपल बीमारी मुंगता वाजे हुआ اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختمی کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 03303037004 علاج ہاگا چفر کو द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुनना ना उम्मीद शुरू बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा कतासु

0: Right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े